Rihanna, Pretty, Sabaya. PFB Scorecard Radio Sunday Anunsa Kari Kramela Hami Chows Rota Yu Same Sunalu Bihani Ma Ra Third Hour Yeniki Final Hour Ma Hanunsa Mosene Ko Saath Ma Rabu Shivani Final Hour Ma Dabale Bharpur Entertainment Rai Ko Sa Mita Mita Ki Sangeetar Ko Saath Ma Ra Saathe Bibina Jan Kareer Bin Dabake Sami Chema Rakhde Aine Rai Ko Su This is K Events Ar Gubare Ma Pani Hami Jan Kareer Rakhye Halo Upcoming Events Aru Rai Ko Sa By the way, अब अपने events अलग कुरा करता हैरी weather बनी रामरो भाई को सब but again hay fever लिची सताए को साथ इस बार कुरी संका साइना but probably तबेले मेरे voice part अपने जाना सकते हो चलो hay fever को season लिया करता हैरी अलग थी मो अपने धेरे ने बाहर निकली रहे को थे for the past few days इसको effect चाहिए अरे यहाँ पर ही रहे को सब माय पर ही राम शब्द नहीं यो समय मासी आँखा को लगी shades और लाओ साके संभाल के यो पोलैंड एकदम ही उड़ी रहे को अवस्था रो मासी मास्क और लाओ ने कुरा रो मापने हम लोग एकदम ही ध्यान दियो वाला अपनी बना चाहन सु राम शब्द ये अनुसार हम ही रहने रहनी सो राव कार्यक्रम आ रहा दे रहा नोदा हेरी अब अपनी के इवेंट्स अर्के कुरा करे हालो अब कभी इवेंट्स ही रहे कुसा किरात राय या यो खा उबावली सकेला इसी सैटरडे को दिन 23rd of May में होने गए कुसा किरात राय हाउस Campbell Lane Walking Survey में होने गए कुसा रेसे गरी और को इवेंट परी इंटेक 1991 को से 35th anniversary 23rd of May के दिन में से हिमालय ओसिस में होने गए कुसा टेट वर्थ यो से समय दिवसों को एक बजे देखी बेलू की 10 बजे सम्म लाइव म्यूजिक आर्टिस्ट को नेपाल बाट परफॉर्मेंस रहने सा भरपूर मनोरंजन र कुनै इन्क्वायरीज छन् भने तपाईले चेयरमैन बीर बलाल वाला अवश्य पनि सम्पर्क गर्न होला

चलचित्र अर्पणको यो मिठो सुमधुर गीत पश्चात यहाँ बापी लहरीलाई मैले स्वागत गरिसकेकी छु र उहाँ भन्नुहुन्छ, दिल में हो तुम आँखों में तुम बोलो तुम्हें कैसे चाहूं।